ओ साई तुम हो जहां हमारी खुशियां है वहां हमारी हर दिल की अरमान हो तुम जहां भी हम जाए साई वहां तुझको पाए यही है हमारी दिल की दुआ।

कि जहे किस्मत है जो खुदा का कभी दीदार हो जाए तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए।

0: राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ। जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पहे कदे होहे नानिके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए, जब लगो शब्द भेद नहीं आया, तब लगो काल संताए। अनको दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। पहरो महला पहला, सगली रैन सोबत गलफाही, दिन से जंजाल गवाया। खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया। मन रे क्यों छूट सुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊन दो कवल मन मुख मत होची, मन अंधे सिर धंधा, काल बेकाल सदा सिर तेरे, बिन्ना में गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान में होने, शब्द विचार राम रस चाखिया, नानक साज पतीने। पहरो महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता। सोजन ऐसा मैं मन भावै, आप मारे परम प्रदाता, गुर की कार कमावै रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरखिया देसो, घट घट अंतर सर्ब निरंतर, रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाखिया, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटै गुरसेवा, नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला, हृदय नाम सर्ब तन धारण, गुर प्रसादी पाई है, अमर पदार्थ ते कृतार्थ, सहित ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सह सेती कर जाइए रहाओ। परम भेद पौ कवो ना छूटस, आवत जात ना जानी, बिन हर नाम को मुक्त ना पावस, डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोवस, भरम ना मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया, मन ही ते मन मूवा, अंतर बाहर एको जानिया, नानक अवर ना दूवा। पहरो महला पहला, जगन होम पुन्नता पूजा, देह दुखी निर्दुख सहै, राम नाम बिन मुक्त ना पावस, मुक्त नाम गुरमुख लहै। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, बिख खावै बिख बोली बोलै, बिन नामै नेफल मर भ्रमना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण मखाणे, संध्या कर्म ते काल करै, बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरै। डांड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करै, राम नाम बिन सांत न आवै, जप हर हर नाम सो पार परै। जटा मुकट तन पसम लगाई, वस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांधै पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्ब जिया, गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी। रेडियो साई ब्रिंग्स टू यू एवरी डे द टीचिंग्स एंड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा।
2: Radio Sai now offers you some devotional Christian music.